याद है तो बाप हूँ तेरा मगर तुझको खिला सकता नहीं, दोनों हाथों से कभी।

0: कपाल
1: तो पंज दस तो छक्के बारह
0: चमक चमक तकदीर का तारा
1: तो छक्के चौदह तो छक्के सोलह
0: मैं हूँ आग और तू है शोला।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

चली ये फौज हमारी रे, चल चलम चल चलम चल। छिड़ी लड़ाई भारी रे, चल चलम चल चलम चल। चली ये फौज हमारी रे, चल चलम चल चलम चल। छिड़ी लड़ाई भारी रे, चल चलम चल चलम चल। चली ये फौज हमारी रे, चल चलम चल चलम चल। छिड़ी लड़ाई भारी रे, चल चलम चल चलम चल।

वर्दी पहनी चूहों ने, मेंढक बैंड बजाते हैं। वर्दी पहनी चूहों ने, मेंढक बैंड बजाते हैं। तितली के रथ पर बैठे लड़ने भिड़ने जाते हैं। हर कद

मुकेश जी और आशा भोसले से। फिल्म का नाम मोहब्बत इसको कहते हैं और एक बार फिर आशा जी हिस्सा ले रही है प्रोग्राम में, इस बार शमशाद बेगम के साथ।

गजरा मोहब्बत वाला फिल्म किस्मत का गीत उजाला रेडियो पर आप सुने। इन्फॉर्मेशन जानकारी के लिए हमेशा आप देखें वेबसाइट पर ujala.nl। और सुनने वालों एक और पुराना गीत अश्नी माता दिन की आवाज में।

तोर रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तुझ

मुंडन संस्कार होने वाला है पूजा लड़ी पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश Formaar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl. info@ujala.nl.

चांद जैसी लड़की। उदित नारायण की आवाज में गीत आप सुनी और फिल्म देवदास से निकाला हुआ। उजाला रेडियो पर अब लता जी। हाँ, लता जी के साथ श्री कुमार को आप सुनेंगे।

जिया जले रात भर धुआं चले, लता जी की आवाज साथ में एम जी श्री कुमार, फिल्म का नाम दिल से और जावेद अली की आवाज में गीत सुनिए।

0: are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: कह दूं तुम्हें
3: हाँ
2: या चुप रहूं
3: ना
2: दिल में मेरे आज क्या है
3: क्या है

जाने ना तू अली खान। हाँ, अली खान की आवाज में आप सुने और ये उजाला रेडियो है। इन्फॉर्मेशन के लिए हमेशा उजाला.nl।

जाना, जिंदगी से नहीं जाना, कभी नहीं जाना, जाना तुम नहीं जाना। एंड उजाला रेडियो से दूर भी कभी नहीं जाना।

मुकेश जी की आवाज़ का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। उनकी आवाज़ की विशेषता कि वो जब गाते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत सच्चा ईमानदार भोला भाला आदमी गा रहा है, और हर गीत को ऐसे प्यार से गाते थे, लगता था कि उनके लिए ही बनाए गए। कभी लगता है कि राज कपूर जी मुकेश जी के लिए बने हैं, कभी लगता है कि मुकेश जी राज कपूर जी के लिए बने हैं।

0: एक से एक आवाजों और गीतों की पहचान सुनिए उजाला रेडियो पर।
1: आया गुल रही गुलशन रहा कि गुल के पर...

अगर आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

ये है मुंबई मेरी जान, हिलके गाना, हिलके फील गुड धमाका गाना ऑन द वन एंड ओनली उजाला रेडियो। या इट इज मेरा और आपका साथ उजाला रेडियो, अमित जयराम के साथ में हिलके गवारियत गाना, न्यू बॉलीवुड सॉन्ग्स, हिलके धमाका फ्लेवर्स एंड नेचुरली ook een beetje romantische gana. Zo doen we dat. Uit de film Bhangra Pale uit het jaar 2019 is dit Hoja Rangila.

बंधु तू मेरा मेरा है तुझसे दिल का वास्ता। ब्यूटीफुल सॉन्ग और आवाज रहा यसर देसाई। एक से एक मोई मोई गाना, एक से एक हंगामा गाना और एक से एक फील गुड गाना। आवाज है कृष्णा अभिषेक और गाना का नाम है ओ पुष्पा। ओ पुष्पा आई हेट टीयर्स।

एक धमाका गाना और गाना का नाम है मोनालिसा द 100 बक्स द स्टेफन संतोख सिंह सामने में दुष्यंत प्रताप सिंह उजाला रेडियो है हिट गानों का मेघा हिट के साथ और इस बार एक धमाका गाना

कभी दूर दूर कभी पांच पांच कभी दूर पांच के बीच बीच में, या फिल्म का नाम है जब मेरी जब हैरी मेट सेजल, या यही तक aan break सुना है. En we genieten van de heerlijke gana hier op Ujala Radio vandaag op deze prachtige heerlijke mooie dag. दुनिया का मशहूर हिंदुस्तानी हिट रेडियो और वो भी अमित जयराम के साथ. जहां भी आप वाच योगा ना डूम बेंट, ik zou zeggen geniet van deze prachtige mooie dag en geniet van de heerlijke Ghana hier op jouw favoriete radio Ujala Radio.

फिल्म का नाम है भंगरा पाले और आवाज ऑन द वोकल सशवत सिंह। खूबसूरत ही लगा धमाका गाना और गाने का नाम है हो जा रंगीला रे।

फिल्म का नाम है खानदाना खानदानी शफकाना और गाना का नाम है शहर किलर की द सेम फ्रॉम बादशाह तुलसी कुमार इन दिस हिट गाना। We gaan weer eventjes terug in de tijd naar de film Kris. Aal Sunao, ik pjaar ki, ik kahani. Het is de stem van Sonu Nigam samen met Shreya Ghoshal in deze lovely, heerlijke romance-gana.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 vragen voor maar 100 euro op उजाला रेडियो. स्टूर ये ईमेल नार info@ujala.nl info@ujala.nl 15 vragen voor maar 100 euro op उजाला रेडियो.

7:10 गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, दिस इज यू आर और मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे। आज 26 तारीख सितंबर है मेरे प्यारे सुनने वालों, और वो भी साल 2026। आज आखिरी शनिवार है इस महीने का और कुछ दिन और बाकी है, फिर ये सितंबर महीना भी हिस्ट्री में गिना जाएगा। मार मेरे प्यारे सुनने वालों, वीकेंड है और सभी एंजॉय कर रहे हैं अपना वीकेंड। बहुत खूबसूरत दिन आज गुजरे हैं और रात भी बहुत ही खूबसूरत और हसी है। आप सभी ने चून किए हुए उजाला रेडियो के साथ बेहद खुशी है हम, तो जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है और जहां जहां पर भी आप चून किए हुए हैं उजाला रेडियो पर, तहदिल से स्वागत करता हूं आप सभी का। आप सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और आदाब अर्ज है। सैटरडे नाइट फीवर मेरे प्यारे सुनने वालों, फिर एक बार आपका दिल हम बहलाएंगे विद द फाइनेस्ट लोकल्स, और वो भी रात्रि में 12 बजे तक 5 घंटे लगातार आपका सेवा हम करेंगे लिए ये प्रोग्राम लेकर, और वो भी लाइव एंड डायरेक्ट यूआर के स्टूडियो रोटरडम से, जहां से ये प्रोग्राम बनाया जा रहा है। मैं दिल फिल खस्से लगाई मैं देखता हूँ कुछ नासी भी है यहाँ, बामी भी है, वतफलीसवार बेतरबाल भी है, कुछ सूर भी मैं मुझे दिखा रहे रोड का बोले है बिरंबी और प्याज। आहा, काफी मजा आएगा। उम्मीद और आशा करते हैं कि आप जहां पर भी हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, आप भी एंजॉय कर रहे होंगे अपना शनिवार, अपना वीकेंड। हमारे ये प्रोग्राम के दौरान मेरे प्यारे सुनने वालों 8 बजे नाद क्लॉक फन आख्तूर कमर्शियल ब्रेक के बाद सभी एपर्स के नाम जो कश उठाएंगे स्टूडियो में ऐप करने के लिए, उन सभी के नाम से गीत हम चलाना शुरू करेंगे। एंड ये मखदूस फनफ न्यू आल खान एपर नाद स्टूडियो में हाई हेलो टू सेह 020-363-0808 020-363-0808। और है आपके कामकाज के लिए मेरे प्यारे सुनने वालों, आपके फरमाइश से जरूरी खबरें, मौत की खबरें, जो भी जानकारी इंफॉर्मेशन आप प्राप्त करना चाहोगे तो आप उजाला रेडियो को कांटेक्ट कर सकते हैं तार के जरिए, मेल के जरिए। अगर आप तार करना चाहोगे तो ये मुमकिन है सोमवार से शनिवार सुबह में 10 बजे शाम में 3 बजे तक, और वो भी तार का नंबर जो दिया गया है 020-409-0807 लेकिन जैसे मैंने कहा, किसी भी दिन, किसी भी वक्त, किसी भी पल, जब भी आपको उजाला रेडियो का जरूरत पड़े, आप मेल कर सकते हो info@ujala.nl पर। मेरे प्यारे सुनो, आज का ये पहला जो घंटे है, हम बहुत बहुत खूबसूरत नगमाएं लाए हैं, तो आने वाले घंटों में आपका दिल बहलाएंगे जरूर। लेकिन पहला घंटा जो है खाओ अली मारम बीच लेकर मोय त्रिनी पॉप्स लॉयस्टर, जो हम समेत करके लाए हैं, और एंड मिस्टर सैन फन या द्वितीय आठ 2026। तो आप भरपूर एंजॉय करें मेरे प्यारे सुनने वालों, आपका व्हाट्सएप का इंतजार में है, और जिस तरह से व्हाट्सएप आएंगे आपको तो मालूम है, उसी हिसाब से भी लोगों के लिए गीत हम चलाएंगे 8 बजे के बाद। मवखाने इवल लेकर ना डेयर्स, पहला जो गीत हमने तैयार करके रखा है, शशि और क्लाइमेक्स मिलकर गीत गाएंगे हियर ऑन यू आर।

या या या अत मस हैव बीन लव और चांदी जैसा रंग है तेरा। क्लाइमेक्स और शशि की आवाजें हीरो निवार मेरे प्यारे सुनने वालों। 19 मिनट गुजर चुके हैं 7:00, ये आप ही का मनचाहा और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो है। शनिवार है मेरे प्यारे सुनने वालों, सैटरडे नाइट फीवर फिर एक बार सेवा में पेश कर रहा हूँ एकदम लाइव एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रतनाम से। मैं हूँ रतन राम दुलारे पांडे और द लोकल्स आप तक पेश कर रहा हूँ। और जैसे मैंने कहा आज का ये पहला घंटा में कुछ त्रिनी पॉप आप तक हम पेश करने वाले हैं। सभी इसी साल का रिलीज हुए नगमाए हैं मेरे प्यारे सुनने वालों और उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी भी आनंद लेंगे संगीत के साथ तमाम लोकल्स के साथ। फिर एक बार आप सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और आदाब अर्ज है। एक गीत के अंदर में कुछ लोगों ने ऐप किए हैं आपके लिए, जरूर से जरूर हम गीत चलाएंगे 8:00 के बाद। और आप भी चाहते हैं दन मुझे वेलखान अपना 020-3 9 9 9 मेरे प्यारे से नोलो। लेट्स एंजॉय दिस लास्ट सैटरडे ऑफ सितंबर। विराम ये क्या हुआ

यस यस यस मिस्टर वीराम, मेरे प्यारे सुनो वालों, ये क्या हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ? ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनो वालों, लेकर बीट में इन्होंने ये गीत को फिर से सजाए हैं, बनाए हैं अपने ही रंग और ढंग में, और आप तक हमने बहुत ही प्रेम और प्यार के साथ पेश किया है। 03-3-9-0-0-0 जहां पर आपको ऐप करना है, और आपको मालूम रहे लोकल्स हम चला रहे हैं, खीन ओरिजिनल सॉन्ग्स, नगमाएं जो ज्यादा से ज्यादा बॉलीवुड के नगमाएं हैं, फिल्मी सॉन्ग्स हैं जो फिर से लोगों ने अपनी आवाज में अपने ही रंग और ढंग में सजाए हैं, बनाए हैं, और आप तक ये प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर में हमेशा पेश किया करते हैं। और चॉइसेस आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि आप एक चलता नगमा चाहते हैं या रुस्तखान सोल, और बाकी इंफॉर्मेशन देने या मुनासिब नहीं होंगे क्योंकि आपका फरमाइश हम पूरा नहीं कर पाएंगे। रिचे सैनल सेलेक्टेड, और उसी सिलेक्शन से गीत हम निकालेंगे, और आज के सिलेक्शन में कुछ लगभग 350 नगमाएं हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, और काफी पुराने भी है जो हमें ले चलेंगे वे बैक लेकिन बहुत खूबसूरत है, वो भी हम चलाएंगे। मार्स वॉल्स बलोव मेरे प्यारे सुनने वालों, ट्रीनी पॉप पहला घंटा में, तो विजय जगदीन की आवाज में पेश करता हूं ये नगमा।

0: Ja, beautiful, mir piere sen oli et havi jay, jak din, musu musu hazi, you malayla. Als ik me niet vergis, Kumar Sanu kijk Nagma. En de film Josh. Maar ik kan het natuurlijk ook verkeerd hebben. Mir piere sen oli. हर एक इंफॉर्मेशन जानकारी के लिए www.ujala.nl और उम्मीद और आशा करते हैं कि आप जहां पर भी हैं मेरे प्यारे सुनने वालों आप खुश हैं चाहे आप अकेले में हो या दोस्तों ही प्रेमियों के साथ आज अपना वीकेंड मना रहे हो शनिवार को बहुत सारे लोग छुट्टी से हैं और छुट्टियों में सुबह के दिन अपना सामान खरीदने जा रहे हैं दोपहर को पका रहे हैं कुछ चटक मटक और रात्रि को एंजॉय करते हैं फरियारी भी होते हैं कहीं फीस वीस भी जाना पड़ता है लेकिन जिस तरह से भी आप सुन रहे होंगे तहदिल से स्वागत है आप सभी का 03-3603-0808 जहां पर आपको ऐप करना है अगर आप चाहते हैं कि आपके नाम से भी मैं एक लोकल चलाऊं पसंद मेरे होंगे लेकिन आप हाँ ये जरूर मुझसे कह सकते हैं कि आप एक चलता नगमा चाहते हैं या एक कृष्ण खनुमान सो ठीक है रिकी राम और क्लासी पेश करता हूँ हियर ऑन यू आर
1: well,

या चीना लगे मेरे प्यारे सिने वालों, एंड दैट वाज रिक रैम और क्लेसी। आपको मालूम रहे मेरे प्यारे सिने वालों कि एपर्स इतनी हो गए हैं कि 8 बजे हम शुरू करेंगे आप सभी के लिए गीत चलाने। तो पहला घंटा फन आख्त नीश इस अल्फोल आप अप एप करेंगे स्टूडियो में 02-3603-0008 पर, तो आपका गीत ब्लॉक 9-3 में हम चलाएंगे, जो ब्लॉक होंगे 9-10 तक उसी में आपका गीत हम चलाएंगे, ठीक है। तो आपको मालूम रहे एक न्यू ऐप जो स्टान मुते को लंबी चो वक्त त्रिनी पॉप यानी कि गयाना वेस्ट इंडीज त्रिनिदाद एंड टोबैगो, और उसमें भी हम जोड़ लेते हैं अम्बीच अमेरिका, न्यूयॉर्क सिटी में मायमी, फ्लोरिडा वहाँ टैम्पा, और नतुल कनाडा में भी कुछ हमारे भाई बहनों रहते हैं जो खूबसूरत नगमाएं बनाते हैं, उन सभी को हम इस पहले घंटे में उनका गाया हुआ गीत जो मेरे पास आज है, एंड दैट्स इन अवेलेबल, एक छोटा सा झलक आपको हम सुनाते हैं, जैसे कविता सुखूजी हमको आवाज दे गाकर सुनाएंगे इसी तरह से।

कविता सुखू मेरे प्यारे सुनो, हमको आवाज दे और ट्रेन पॉप की। मैं देखता हूँ प्रिंस नवीन प्रभु आपकी बार हिस्सा लेंगे।

0: Prince with Studios.
1: प्रिंस नवीन प्रभु मेरे प्यारे सुनने वालों, कि तुम आ गए हो और नूर आ गया है। बखान नाड़ खिलावन, वो भी आरती सुखाए खिलावन, पूछू ना यार क्या हुआ। रिमेंबर दिस इज यू आर सैटरडे नाइट फीवर विद रतन, एंजॉय।

0: से
1: आरती सुखाएगी खिलावन मेरे प्यारे सुन वालों। हेल कटरीन पॉप आप तक हम पेश कर रहे हैं और अभी हम चलेंगे द जिमिनी बैंड की ओर छम छम छमके जो गीत का बोल है। लेकिन गीत चलाने से पहले मेरे प्यारे सुन वालों आपको मालूम हो कि आप अभी तक ऐप कर सकते हैं 0 3 3 9 0 0 0 स्टूडियो में सीधे आपका व्हाट्सएप आएंगे और जो लोग ये कश उठाएंगे उन्हें मालूम है ये प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर के दौरान आप के लिए हमारी ही प्लेलिस्ट का एक नगमा निकाल कर आपके नाम से हम चलाने वाले हैं। मदद खबर ताली मार जब तू ऐप करिए तब तू ना ऐप करिए तगनवा हम चला बे सोई सो मा तो तोड़ नाम ना लिया जाएगा तू जाने तो सोनना है। एंड मेंस एंजॉय योर वीकेंड। बहुत सारे लोग हफ्ते भर काम करते हैं बस ये शनिवार और रविवार दो दिन हैं जो आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं और बहुत सारे लोग जैसे कि मैं यादन है पिसोंदा आफंत अलेन रुस्मोमेंच वांट एक दिन कमती पड़े हैं हफ्ता में ऐसे बतिया है जिमिनी बैंड मेरे प्यारे सुनने वालों एंड ब्लेव मार ऐप ऑफ 0 3 3 6 3 0 0 0 आपको मालूम रहे कि अगर आप ऐप करेंगे तो आपका गीत हम चला पाएंगे अश न्यू खाते पर टू सुनी है 3 यूर

जीवनी बहन मेरे प्यारे सुनने वालों, और इस घंटे का आखिरी गीत पेश करने जा रहा हूं शिवाजी की आवाज में। और इस गीत के बाद 8 बजे के ब्रेक होंगे मेरे प्यारे सुनने वालों। ब्रेक के उस पार आप सभी से फिर हम मिलेंगे और एपर्स के नाम गीत चलाना हम शुरू करेंगे।

Ja, beautiful, mere pjeri se në alo. Welcome back, welcome back. Jeta, the sweet melodies forever. 12 minute guzar chuke hain, mere pjeri se në alo, 8 bachkar. 12 minute over 8 ho chala hai. Weekend se shanivar hai. Sabhi enjoy kar rahe hain. Appers jo app kar rahe hain, kehte hain ki kaafi enjoy kar rahe hain. नगमाओं के साथ हमेशा शनिवार जब भी रतन होते हैं तो एंजॉय करते हैं. दिल खुश हो गया. बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद. वादा के मुताबिक मेरे प्यारे सुनो, यहां से हम देखेंगे कि कौन है जो मुझे ऐप किया है स्टूडियो में. ओप 02-3-9-9-9 उन सभी के नाम से गीत हम चलाएंगे. और जिस हिसाब से आपने कहा कि अनरुस्त को ऑफन स्नेल हम चलाएंगे, और जो लोग कुछ नहीं कहे हैं उनके लिए हम कुछ ना कुछ भी चला देंगे. जो एपर्स अप एप करना चाहेंगे तो नॉन म्यूचुअल सेफ की थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा. अगले ब्लॉक में फनी खतोतीन में कोशिश करेंगे आपका गीत चलाने का. Marat kan zomaar zo zijn dat het niet lukt en dat het tussen 10 en 11 gaat worden. Maar koosjes, als we het doen en we het ook doen, dan gaat het natuurlijk lukken. Tu jane toch. Mere pyare sunalo, main dekhta hoon hamare pehla aaj jo app ki hai aaj mujhe Rotterdam shahar ka bhaiya Johnny Kalicharan ji. तो जॉनी कालीचरण जी, बहुत बहुत बहुत धन्यवाद. डंकी वेल आपके ऐप के लिए, आपके सपोर्ट के लिए, ट्यून करने के लिए. एंजॉय सैटरडे नाइट फीवर जो लाइव एंड डायरेक्ट पेश हो रहे हैं आप ही के शहर से, रोटरडम शहर से. ये प्रोग्राम बनाया जा रहा है उजाला रेडियो पर. एंजॉय योर वीकेंड. मैं देखता हूँ विशाल खेमाए का एक सुपर टूपर एक्शन बैठक हम पेश करने जा रहे हैं. और गीत का बोल, तेरी उम्र है 16 साल, काश

संजय योढ़ा की आवाज मेरे प्यारे जिन वालों, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, या मूवी सॉन्ग मुकेश जी का आखिरी गानों में से ये था एक, और जब ये फिल्म रिलीज हुआ उसी साल मुकेश जी इस दुनिया को छोड़कर परलोक सिधार गए। और संजय ओझा की आवाज तो मैसिव है, और इनकी आवाज में गाया हुआ ये नगमा भी बहुत खूबसूरत है। 020-363-0008 Mensen, als u gaat appen, moet u wel geduld hebben. Voor elke apper zal ik een liedje afdraaien. Maar het heeft totaal geen zin om te vragen wanneer mijn liedje komt, omdat ik het zelf nog niet eens weet. Doe je aan het toch? Wat ik wel kan zeggen is, als je nu gaat appen naar de studio, dan moet je wel lang wachten, maar dat kan misschien in het volgende blok nog passen. Dat weet ik niet. Anders wordt het tussen 10 en 11 gedraaid. Ik ben er tot 12 uur, dus het kan allemaal nog. Aapjinta nakere. No spang. Doe dat niet toch. We gaan naar Amstelveen, mijn peris en Amstelveen. Ik hoor aap koolie chelte hai. Jaha, samtinia, hamar. सुशीला चंद्रिका सिंह जी प्रोग्राम सुन रहे हैं, और जब भी मौका मिलता है, मुझे मालूम है सुशीला जी को उजाला रेडियो पसंद है, मेरे प्रोग्राम को भी पसंद किए करते हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं, तो सुशीला जी को हम कहेंगे बहुत बहुत बहुत डंकीवेल धन्यवाद, आप फिर चुन किए हुए हैं, दिल खुश हो गया। एंजॉय योर सैटरडे, एंजॉय योर वीकेंड। और प्रभत पंचू जी का गाया हुआ एक मोहम्मद रफी का जो मैशअप है, सुशीला जी के नाम एडम सल्फीन।

तुमसे अच्छा कौन है दिलो जिगर लो, जान लो कि हम तुम्हारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। रफी साहब जी का ये मैशअप प्रभट पंचू जी की आवाज। घड़ी की तरफ मैं देखूं तो मेरे प्यारे सनम धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे हो रहे हैं 5 मिनट ओवर क्लॉक फन हाल ऑफ नीह, सरे 8:00 ऑलमोस्ट 5 मिनट गुजर चुके हैं। सोशल मीडिया पर मेरे प्यारे सुनो, आपको मालूम होना चाहिए टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर उजाला रेडियो भी शामिल है। गेट कनेक्टेड 12 उजाला रेडियो ऑन सोशल मीडिया वोटोंस फ्रेंड कनेक्ट मेटोंस, जो भी हम छापते हैं वहां आप आसानी से पढ़ पाओगे, अपना कमेंट्स दे पाएंगे, किसी को टैग कर पाओगे, डील कर सकते हैं, शेयर क्या क्या नहीं कर सकते हैं। एंड नेचुरली उजाला रेडियो का जो यूट्यूब चैनल है, जरा से एक झलक वहां पर भी आप जाकर देख लीजिएगा और अबोनेरिय ऑफ उजाला यूट्यूब चैनल। हम आपको ले चलेंगे अब आमस्टल फेन से एकदम आरएनएम की ओर। आरएनएम वहां से आनंद ले रहे हैं प्रोग्राम से शारदा खनित फन आउटस्टैंडिंग फनहार वीकेंड फनहार साथ रख। और ऐप करने के लिए शारदा बहुत बहुत बहुत थैंक यू, वेल धन्यवाद। सागर मलिक वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स हमारे होलैंड के अंदर, इनकी आवाज में गाया हुआ एक नगमा मैं शारदा के नाम करता हूं। आई एम

तौबा तुम्हारे ये इशारे, सागर मालिक जी की आवाज, मेरे प्यारे जिन वालों, हियर ऑन यू आर सैटरडे नाइट फीवर में हमने आप तक पेश किया है जहां पर आपको ऐप करना है अगर आप चाहते हैं कि आपके नाम से भी मैं एक गीत चलाऊं, एक लोकल सॉन्ग। मार्सब्रुक में रहते हैं लेकिन इस वक्त पेरिस में है, पेरिस द ब्यूटिफुल लव सिटी। पेरिस में है चित्रा जी और हिरेंद्र जी और वहां भी जाकर चून किए हुए हैं, उजाला रेडियो पर सुन रहे हैं प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर। तो दिल से थैंक यू लीवेल, बहुत बहुत धन्यवाद। एंजॉय पेरिस, वन ऑफ माय फेवरेट सिटी यूरोप के अंडर में। और हमने एक गीत तैयार करके रखा है, दैट इज फ्री स्टाइल फन सुरीनाम, एक बिंदास स्पाइसी, क्या कहते हैं, एक बिंदास स्पाइसी मिक्स, और मिलियाना जी की आवाज में पेश करने जा रहे हैं चित्रा जी और हिरेंद्र जी। एंजॉय, एंजॉय योर सैटरडे, एंजॉय योर वीकेंड, एंड नटुरलक सैटरडे नाइट फीवर।

Miliana मेरे प्यारे सुनो वालों, मैं फरमासी फ्री स्टाइल बिंदास स्पाइसी मिक्स इन्होंने सेवा में पेश किया है। दिस इज यू आर मेरे प्यारे सुनो वालों, वीकेंड है, उम्मीद और आशा करते हैं कि आप भरपूर भी एंजॉय कर रहे हैं अपना वीकेंड या इनमें से चटक मटक बना है। En ik word ook hier lekker verwend, alleen ja, ik kom niet aan eten toe. Or hum namangin laki bahut spicy ho jaye hamar muhua mein. Dat het gaat branden of dat ik er last van gaat krijgen. Taki hum aap tak mooi se baat bhi hum na kar paayen. Maar het ruikt wel lekker. Masala kan echt lekker ruiken als dat goed geboeden is. Lekker hoor. Aur aaj itni khana hai mere pyare sunne walo. Pata nahi kya khaye kya nahi. Lekin ek baat hai, dat wil ik wel zeggen. Als er bara wordt gemaakt. Nee, als je rijst hebt gegeten, roti hebt gegeten, dal hebt gegeten. Met vlees en groente, itiari. De ogre baat me kort daarna, moet je niet met bara komen. Dat kan je niet meer eten. Bet waar ik dan val. Doe je aan het toch. Daarna ga ik je horen op college Lingi, mijn repair in Sinualo. Daar lieve Mieke, die programma. Zie je horen hoe je hebt. Dankjewel, lieve Mieke, die app je hebt gelieerd. बेहद खुशी है हम कि आप ही चून किए हुए हैं उजाला रेडियो पर एंड सुन रहे हैं प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर। एक है अपन हील मूवी हियर फ्रॉम लकी सिंह, वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स भी हमारे हॉलैंड के अंदर। बेहतर मूवी सॉन्ग फंसून निगम इन्होंने फिर से गाए हैं मीका जी के नाम डनाह। खनीत फाइन वीकेंड एंड खनीत फाइन यू आर सैटरडे नाइट फीवर।

लक्की सिंह की आवाज, मेरे प्यारे सुनो लो, खूबसूरत गीत पेश हुआ है। इस घंटे का आखिरी गीत पेश करने जा रहा हूँ। इस गीत के बाद हम ब्रेक की ओर बढ़ चलेंगे, और वो भी 9 बजे का। ब्रेक के बाद हम आप सभी से फिर जरूर से जरूर फिर मिलेंगे। रिमेम्बर दिस इज यू आर लाइफ एंड आर आई क्यू आर क्रिस्टी जो रोटरडम से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर, और मैं हूं आपका यारों का यार रतन राम दुलारे पांडे।

जडून बिंद्राबन एंड पापेमान मेरे प्यारे जिने वालों, ये भंगरा मिक्स विद फार्मेसी बीट मशीन। मेरे प्यारे जिने वालों, 12 मिनट तो गुजर चुके हैं और वो भी 9 बजकर आप ही का मन चाह और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो है ये। मेरे प्यारे सुनने वालों, वीकेंड है, शनिवार है, एनवायर से इनमें से दी वर्क। इस वक्त जो लोग काम पे हैं, मैक नहीं आउट व्हाट फॉर वर्क ये दूत मैं आज जान तो लाइस्टर बन स्टूर इवन एप्पी अलाद वेट कि आप सुन रहे हैं, चुन किए हुए हैं एंड नेचुरली दिल लगाकर काम करना and enjoy you are. एपर्स के नाम गीत चला रहा हूं मेरे प्यारे सुनने वालों, और आप भी चाहते हैं कि आपके नाम से मैं गीत चलाऊं, दमुचे वेल दर फनायत खान की अप अगर आप ऐप करेंगे डन से तुई सोई सो इन अट ब्लॉक ये तीन तोत एलफ्यूर मादर इस नोक हेल्फुल रॉयम्ट सोफिल एपर्स से नहीं एक नहीं 020-363-0808. We gaan naar Turnhout, जहां से सुनीता और खुशी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। थैंक यू वेल सुनीता एंड खुशी, खनीत फन यूली साथ रखा वन खनीत फन यू आर खनीत फन सैटरडे नाइट फीवर द फॉर्मेसी म्यूजिक बैंड गुड वाइब्स आउट सुरीनाम met een heerlijke kuch kuch hota hai mix Mr. Kwaiki en Rohit aur geet hum naam karenge Sunita aur Khushi ke naam I turn out

ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनो वालों, म्यूजिक बैंड द गुड वाइब्स हित हमारे प्रिय सूरीनाम देश में या देश का होना चाहिए, है ना। कुछ कुछ होता है मिक्स क्वाइकी और रोहित। मिनसम उम्मीद और आशा करते हैं कि आप जहां पर भी हैं हसलख है वो दिस वीकेंड दिस साधन खावंत और आपका मनचाहा और फेवरेट रेडियो उजाला रेडियो आपका साथ है। एनुप द साथ रखावंत जब भी मैं हूं कोशिश करता हूं भरपूर आपका दिल बहलाने का। वे द फाइनेस्ट लोकल्स एंड वो है बहुत खाओ ओ मरी खाओ लातर मिस्किन इन द ब्लॉक के फन 3-11 कुछ पुराने लोकल्स हो जाए। UE12 फन नदीम खान फन विम दमरी शहीद वगैरह वगैरह मार हुएल विम दमरी का एक नगमा हमने तैयार करके रखा या एक सखम एक दिंग नाम दी खाएक में तेंद्रा है और इसे हम नाम करेंगे रोटरडम स्किनाम में जो रहते हैं रोहिणी कल्लू जी। तो रोहिणी कल्लू जी एंजॉय कर रहे हैं अपना वीकेंड और चून किए हुए हैं उजाला रेडियो पर। रोहिणी जी एंजॉय यू आर एंजॉय सैटरडे नाइट फीवर और एंजॉय खास करके रोहिणी जी ये नगमा विम द लेजेंड विम दमरी जी का गाया हुआ जो आपके नाम करता हूँ।

या ब्यूटीफुल मेरे प्यारे सुनने वालों, द लेजेंड विम दमरी जी की आवाज, रंगत तेरी सूरत की किसी में नहीं नहीं, ब्यूटीफुल सॉन्ग हियर ऑन यू आर मेरे प्यारे सुनने वालों। 4 मिनट बाकी है सरे 9 बजने में, 4 मिनट फोर ओ क्लॉक फन हालफ तीन एपर्स का नाम गीत चला रहा हूं, और अब की बार गीत मिस्टर ब्लैक का गाया हुआ मैंने फरमासी एक्सप्रेस। हम नाम करेंगे फोर मै प्रिय स्वागरी हंस लक्ष्मण सिंह जी अयत सुतमेर एंड हंस स्वागरी जी बधाइया हो ऑन सक्लाइन सोन लेफी इस यार एंड दैट वाज गिस्टर 4 यार सो हाय वर्ड ग्रोट बधाइया शुभकामना। Jammer dat ik jou gisteren niet heb gezien, Zwaak. Maar geniet van You Are. En ik heb een mooie twist. Misschien kan je dansen. Ik weet niet of Levi bij jou is. Maar lekker dansen met hem. Lekker twist. Doe je aan het toch? Enjoy your weekend. Enjoy your Saturday. Zwaak die Hans Lachman Singji. And thanks for your always support.

ना करी से कुर्सी के जो एक पाउट है टूट गए और गिरल बड़ा। यह वी नीट विल लॉइसर ये वे तो फेर्दर मेरे प्यारे सुनो, मैं अगले गीत की ओर आपको ले चलेंगी और ले चलेंगे आपको डेन हेल्डर की ओर, जहां इल्स रामडेयाल भी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। तो इल्स जी, थैंक यू वेल आपके ऐप के लिए, ट्यून करने के लिए। एंजॉय योर सैटरडे। बेहद खुशी है हम कि आप भी ट्यून किए हुए हैं और आपके ऐप के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नगमा हमने जो तैयार करके रखा है निजाम वागिद हुसैन गाकर सुनाएंगे। इल्स रामदयाल के नाम अदन हेल्डर।

मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे कि कितना प्यार है हमें। ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा। निजाम वागिद हुसैन की खूबसूरत आवाज में खूबसूरत गीत सोनू निगम का एक नगमा इन्होंने गाकर सुनाए हैं अपनी रंग और ढंग में। रिमेंबर दिस इज यू आर, मेरे प्यारे सुनने वालों, और 10 मिनट गुजर चुके हैं, सरे 9:03 ओवर द क्लॉक फाना, हालफ तीन हो चला। लाइफ एंड आर एक यू आर के स्टूडियो रोतनाम से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर। वहां नार बेल्जिया, बेल्जिया की ओर शाक विल्ड प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। एंड लाइव सर्फिया डे अभी प्लस शाक, दंकीवेल फॉर ये एपिया। वट फेन दैट यू ओक कान गनीते फान उजाला रेडियो इन बेल्जिया। En wat leuk dat je luistert naar Ujala Radio. Ik heb een liedje klaarstaan, Jacques. Jacques Wilde uit België. Een mooie Bollywood blues voor Jacques. En dankjewel en nogmaals hartstikke dank voor je appje.

क्या करें जब किसी से किसी को प्यार हो जाए। जेसी स्टाइल ब्लूज फनोइड कोक स्टूडियो हमने आप तक पेश किया है मेरे प्यारे सिने वालों। एन वखान आराम सदम जहां पर कैटरीना प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। कैटरीना एंजॉय योर वीकेंड, एंजॉय योर सैटरडे, एंजॉय यू आर उजाला रेडियो सैटरडे नाइट फीवर एन कैटरीना। मैंने गीत को तैयार करके रखा है द किंग ऑफ हिंदी पॉप उमर वागी तो सैन की आवाज में एंड इज नॉट टू लुक फॉर यू कैटरीना। आई टाम से नाम एंजॉय।

दिल है तुम्हारा, ये था उमर वागित हुसैन की आवाज मेरे प्यारे सुनो। और हम बढ़ रहे हैं अब की बार जो गीत की ओर, लामत खुद से है। मैं दो नगमाएं पेश करूंगा किसी के लिए और इन दोनों नगमाओं के बाद हम बढ़ चलेंगे 10 बजे की इश्तिहारे की ओर, और इश्तिहारों के बाद नतुलक आप सभी से फिर हम मिलेंगे लेकर ये प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर। आइलिन जो हार्लेम में रहते हैं, आइलिन डंकीवेल आपके ऐप के लिए बेहद खुशी है हम कि आप ही चुन किए हुए हैं, और हमने गीत को तैयार कर रखा है दो पुराने नगमाएं, खूबसूरत नगमाएं, प्रदीप प्रहलाद सिंह जी का गाया हुआ मैट इंद्रा रामचरण, आइलिन के नाम आइट हार्लेम। डंकीवेल खनित फाइन वीकेंड।

आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

विनोद राठौर में हम सफर मेरे प्यारे सुनने वालों। अनहेर लख खावा आव और अभी कुछ गीतों के बाद हम आपको फिर एक डबल खावा आव सुनाने वाले हैं। फिलहाल तो हम घड़ी की तरफ देख रहे हैं तो अतिस फिर 3:03 मेरे प्यारे सुनने वालों 10:14 गुजर चुके हैं। ये है आप ही का मन चाहट और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो अतिस 7:10 मेरे प्यारे सुनने वालों। हफ्ते का सबसे खूबसूरत दिन है आज शनिवार और शनिवार का जब दिन होते हैं तो सभी लोग खुश में रहते हैं, मगन में रहते हैं, एंजॉय करते हैं अपना वीकेंड। मार नतुलक फरखीत व द वर्कर्स नीत, जो लोग वीकेंड दिन्स में हैं और नाख दिन्स में हैं, हमारे भाई और बहनों अभी को हम याद करते हैं और मुझे मालूम है कि बड़े तादाद में आप लोग भी सुन रहे हैं प्रोग्राम। तो दिल लगाकर काम करना और एंजॉय, यू आर एंजॉय सैटरडे नाइट फीवर। अम्स्टरडम की ओर एक आदमी जो कभी थकता नहीं, कहते हैं कि मानिक बैन मू, टोनी श्री एट अल्मेरा। टोनी डंकीवेल हुडानोक, आपने ये कश उठाए हैं ऐप करने के लिए और हमेशा आप सपोर्ट करते हैं। सुसोलो भी बनाना, मैंने गीत को तैयार कर रखा, मैं देखता हूं दैट इज डायमंड्स 2000 और आपके लिए गाने वाले हैं लकी सिंह। ये गीत जो है, ये नगमा जो है, हियर ऑन यू आर सैटरडे नाइट फीवर में टोनी इसरी के नाम अटल मेरा।

या डायमंड्स 2000 मेरे प्यारे सुनने वालों, लकी सिंह की आवाज, महबूबा महबूबा द ग्रेट मूवी शोले का जो नगमा है, इन्होंने अपनी आवाज में फिर गाए हैं, सजाए हैं अपनी ही रंग और ढंग में, और आप तक हमने बहुत ही प्रेम और प्यार के साथ पेश किया है। 9 मिनट बाकी है मेरे प्यारे सुनने वालों, सरे 10 बजने में नहीं, हमने तो फूड क्लॉक फन हाफ एलफ हो चला है। 12 बजे रात्रि तक आपका साथ हम देंगे मेरे प्यारे सिनेमालो, एंड वहां नतुलक आखिरी घंटा में फन 11 to 12 खबर सुहानो मित सोल्स, तू जाने तो हमेशा की तरह मारा तस्खीन रीखल है तस्खीन वेट। और अगर आप देर से ऐप करेंगे और आप एक धमाकेदार गीत सुनना चाहेंगे 11 बजे के बाद, लातत मवीत एना खाओ क्या ही कर, हम लोग कुछ ही कर सकेला, तू जाने तो। फिलहाल तो हम आपको ले चलेंगे ओवरसीज, पैसिफिक ओशन के उस पार, सॉरी अटलांटिक ओशन के उस पार, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहां हमेशा सस्टेलनोय तुरूर, हर एक वीकेंड हर एक शनिवार जब भी मैं हूं साथ देते हैं सुनीता जी और अजय एकदम वहां दूर टेक्सस में, प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, उजाला रेडियो से जुड़े हुए हैं, तो सुनीता और अजय और जितने लोग भी आप लोगों के साथ हैं, थैंक यू लिवेल, दिल की गहराइयों से आप सभी को हम धन्यवाद कहते हैं, थैंक यू वेल, चून करने के लिए, ऐप करने के लिए, हियर ऑन यू आर, मेरी ये प्रोग्राम सुनने के लिए और ये कश उठाने के लिए, ऐप करने के लिए। गजलिगस्ट बैंड फन नीदरलैंड सा ब्रोसो मैट कारिन बैटली, गीत हमने तैयार करके रखा है, एकदम खरब पे है अजय और सुनीता जी और आप सभी के नाम वहां दूर टेक्सस में, एंजॉय, एंजॉय योर वीकेंड, एंजॉय योर सैटरडे, एंजॉय यू आर, enjoy Saturday Night Fever and Susolobi Faratan.

फरमाती साबरसो और कारिन बैठली जी की आवाज हीरो निवार मेरे प्यारे सिनवालो। एक गीत के बाद मेरे प्यारे सिनवालो एक पुराने डबल हम आप तक पेश करेंगे और किसी के लिए भी हम पेश करेंगे वो दो नगमाएं आउट ऑफ ओवरडोज। उसके लिए हम आपको ले चलेंगे वे बैक मेरे प्यारे सिनवालो नई नी 3 साल तरह नी 20 साल तरह मनोज लांगर। उनका दो नगमाएं सुना चुके हैं एंड वी स्केर बिस वेट वी एक बदू सत्या जी अम्सरडम में प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं और आपके ऐप के लिए बहुत बहुत डंकीवेल धन्यवाद सत्या जी। बेहद खुशी है हम कि आप भी चून किए हुए हैं हियर ऑन यू आर उजाला रेडियो पर सुन रहे हैं प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर। उमर एंड स्क्वाट को हमने तैयार करके रखा है ब्यूटीफुल सोल नगमा बाय द लेजेंड सत्या जी के नाम अहित अम्सरडम। एंजॉय

द किंग ऑफ हिंदी पॉप मेरे प्यारे सुनने वालों, द लिविंग लेजेंड उमर वागी हुसैन की आवाज, एंड इट वाज उमर एंड स्पॉट, ब्यूटीफुल सोल मिक्स जो आप तक हमने पेश किया है हियर ऑन यू आर। मैं से एक और डबल चलावे, लेकिन ik heb gemerkt dat ik het niet goed heb opgeslagen. Aur karan ye hai ki do title hai lekin dono nagmaye selfde hai, to matlab ye ki ik heb ergens niet goed gedaan, to hum double nahi chalayenge. Ek legend hai, unka sirf ek geet hum chalayenge, do hum chala chuke hain filhal. Maar ik wou een dubbel weer doen van hem. Jammer, het is niet gelukt. Or, itna snel praam ke dooraan hem niet. Isse repareer kar paayenge. Dan gaan we dat ook niet doen. We gaan naar Almere. Almere ki or aapko le chalenge, mere pyare sunne walo. Yahan par Sita. Praam se jore hue hai. Sita, dankjewel aapke app ke liye. Aapne tune kiye hue. एक प्यार भरा नगमा, ब्यूटीफुल सॉन्ग तैयार करके रखा है, तो सीता के नाम करेंगे ऐताल मेरा। आप भरपूर एंजॉय करें इस गीत को, यू आर को, सैटरडे नाइट फीवर को, और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेल।

प्यार भरी ये घटाएं राग मिलन के सुनाएं, तेरा मेरा साथ है और हाथों में हाथ है, और फिर देख तो ये जमा कितना प्यारा प्यारा। ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, लता जी और मन्ना दा का ओरिजिनल सॉन्ग, प्रदीप और प्रदीप भला सिंह जी और इंदिरा रामचरण जी की आवाजें। मेरे प्यारे सुनो, रिमेंबर दिस इज यू आर सैटरडे नाइट फीवर, आप सुन रहे हैं और एपर्स के नाम गीत अभी तक हम चला रहे हैं। रात्रि में 12 बजे तक ये प्रोग्राम सेवा में पेश किया जाएगा और हम आपको ले चलते हैं अगले गीत की ओर, जिसे हम नाम करेंगे न्यू खैन में जो रहते हैं धीरज। धीरज डंकी वेल आपके एप के लिए चून करने के लिए, फेंड चौका फसे मैन ऑफ यू आर उजाला रेडियो धीरज। नगमा जो हमने तैयार करके रखा है, क्रिस गीत गाएंगे, मोई सॉन्ग धीरज के नाम अत न्यू खैन। एंजॉय योर वीकेंड, एंजॉय यू आर एंड एंजॉय सैटरडे नाइट फीवर धीरज।

मैं यहाँ हूँ वहाँ और जिंदगी है यहाँ। क्रिस की आवाज में मेरे प्यारे सिनेमालो गीत आप तक हमने पेश किया है। इस घंटे का आखिरी गीत पेश करने जाएंगे मेरे प्यारे सिनेमालो अभी एक धमाकेदार बैठक रिमिक्स। फन हीरा ब्रदर्स विशाल हीरा गीत गाएंगे हमारे रनिया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मेरे प्यारे सुनो, इस गीत के बाद हम बढ़ चलेंगे ब्रेक की ओर और वो भी 11 बजे के बाद एक घंटे और आप सभी के सेवा में हम रहेंगे लेकर प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर। और उस आखिरी घंटे में इन प्रिंसिप खावा अली मसूल सराय मार मुख्त सैन दचे नुख एप ए ये विलन चलता नगमा होर दन मुझे एप नार 020-363-0008। आप एप नहीं करेंगे तो बस हम नगमा चलाएंगे अली मसूल्स। और ये नगमा जो है विशाल हीरा का मफराव एंड मनेर बिहारी जी अप्रीरा थैंक यू लिवेल आपके ऐप के लिए। एंजॉय योर वीकेंड, एंजॉय सैटरडे नाइट फीवर और एंजॉय दिस सॉन्ग।

रबी की आवाज मेरे प्यारे सिनवालो फ्रॉम द एल्बम सोल टू सैल्यूट तेरी बाहों में। घर की तरफ मैं देखूं तो मेरे प्यारे सिनवालो इट इज ऑलमोस्ट 12 मिनट ओवर द क्लॉक फ्रॉम 11 11 बजकर 12 मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सिनवालो। उजाला रेडियो पर आप चून किए हुए हैं, आप सुन रहे हैं सैटरडे नाइट फीवर। 5 घंटे का ये प्रोग्राम का आखिरी घंटे में मान पड़े हैं क्योंकि 12 बजे तक आपका हम साथ देंगे। ये मख नोख स्टेज ऐप मेरे प्यारे सुनो वालो 020-363-0000 अगर आप चाहते कि आपके नाम से मैं गीत चलाऊं। प्रभा जी ने ऐप किए हैं, प्रभा जी एटम सदाम सेंट्रम। तो प्रभा जी जब भी मौका मिलता है आपको आप चुन की ये करते हैं। वैसे तो आप हमेशा कहते हैं कि आप 24 घंटे 7 दिन लगातार उजाला रेडियो पर चुन की ये करते हैं। अगर ये सच है तो बस आपका पांव छूना चाहिए। बेहद खुशी है हम कि आप इतनी सपोर्ट करते हैं सभी अमरूपर्स को हियर ऑन यूआर और उजाला रेडियो को। और आप आज भी देखो ना इतनी रात गए हैं चून किए हुए, आनंद ले रहे हैं प्रोग्राम के साथ। कुछ देर से आज आपने ऐप किया है लेकिन तत्माक नहीं आए थे देर से या लीफर देर से दन ही लमानी तो। Once again, सबरोसो और कारिन बैठली को हमने प्लेस में सजा रखा है और ये नगमा प्रभाजी आपके नाम करूंगा। प्रभाजी हमसे नाम सिंद्र गीत आपके नाम

बैठा ली मेरे प्यारे सुनने वालों, और आपको ले चलेंगे अगले गीत की ओर। नवीद खान जी की आवाज और ये गीत जो हम पेश करने जाएंगे, मोहब्बत की वादे, धीरज के नाम पेश करता हूं। थैंक यू ऑल धीरज, एंजॉय दिस सॉन्ग। नवीद खान जी की आवाज़।

या ब्यूटीफुल मेरे प्यारे सुनने वालों, बहुत ही खूबसूरत गीत जो पेश हुआ है प्रोग्राम में। और एक मोटिव क्या है, एक मोटिव साकल ही ना तू वन टेक अपन क्लेन क्लेन क्लेन क्लेन इशू उन्नीद इशू इस वेख तू जाने हैं प्रोग्राम लाइव बनाएला और लाइव स्टूडियो से कुछ ना कुछ कभी ना कभी हो सकता है। कान नटुलक टेक्निक सेन मारत कानूक सेन दत एक दत क्रिएट हाथ लग गया ईव हो जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है। और मैं अगले गीत की ओर बढ़ चलेंगे मेरे प्यारे सुनने वालों, एंड दैट इज फोर मैन यारों का यार डैनी लक्ष्मण सिंह जी और हमारे प्रिय भी अमीना जी भी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। तो डैनी और अमीना जी अवित खौरा डंक्यूलवेल चुन करने के लिए मैंने गीत को तैयार करके रखा है मोयल ऑफ सॉन्ग होर। चलो मान लीजिए जाए कि डैनी जी गा रहे हैं अमीना जी के लिए, क्यों क्या ख्याल है? डंक्यूलवेल एंजॉय योर साथ रखावन एंड फैन कि आप दोनों ने चून किए हुए हैं उजाला रेडियो पर। शिखर कुमार का ये नगमा डैनी लक्ष्मण सिंह जी और अमीना जी के लिए एट खौड़ा।

ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों। हाँ, पहली बार एक लड़की ने मेरा हाथ पकड़कर बोली, हाँ रे हाँ। किशोर कुमार का ये नगमा मेरे प्यारे सुनने वालों, शेखर कुमार की आवाज, मेड फरमासी दांसा आप तक हमने पेश किया है और 5 मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, वो भी 11:30 कर इट इज 5 मिनट ओवर क्लॉक फन 11:30। ले चलते हैं आपको अगले गीत की ओर मेरे प्यारे सुनने वालों, जिसे हम नाम करेंगे और कहां कहां उजाला रेडियो लोग सुन रहे हैं, हील माला ना अंदर कान फंड वीरल हवाई। मेरे प्यारे जनोलो, हवाई से ऐप आए हैं सांद्रा और विजय झरप, जो प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं हवाई। हवाई में एंजॉय कर रहे हैं, उजाला रेडियो के साथ मजा ले रहे हैं और सांद्रा और विजय को, सांद्रा और विजय झरप जी को हम कहेंगे थैंक यू वेल कि इतनी दूर जाकर भी उजाला रेडियो पर चून किए हुए हैं, बेहद खुशी हैं हम। एंड एक नगमा हमने तैयार करके रखा है सांद्रा जी और विजय झरप जी के लिए, रंजय जी की आवाज ये नगमा, एंड एंजॉय हवाई। थैंक यू आपके ऐप के लिए, दिल आप दोनों ने खुश कर दिया है।

कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है, और बिन तेरे कुछ नहीं है। बाहों का सहारा दे दे, जीने का बहाना दे दे। ब्यूटीफुल सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, उदित नारायण अलका याग्निक का ये नगमा, रंजय जी की आवाज, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेरे प्यारे सुनने वालों, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट लोकल्स हमेशा हियर ऑन यू आर सैटरडे नाइट फीवर में। जब भी मौका मिलेगा इस तरह का प्रोग्राम हम सजाएंगे, बनाएंगे आप सभी के मनोरंजन के वास्ते, आपका दिल बहलाने के लिए। नतुलक अतिसोक्सो एक बैनर नीत एल के साथ दाख, लेकिन जब भी मौका मिलता है हाजिर रहता हूँ और कोशिश करता हूँ आपका दिल बहलाने का आवेद बेहतरीन बेहतरीन लोकल्स के साथ, चाहे वो पुराने हो चाहे वो नए हो। और आप अपने भरे तादाद में भी साथ दे रहे हैं, हम देख रहे हैं कि दूर दूर जाकर भी आप उजाला रेडियो को अपने दिलों में रखते हैं, साथ लिए जा रहे हैं और चून किए करते हैं। वेल, इतना प्यार तो यकीन मानिए उतना ही दुखना प्यार आप सभी से भी हम करते हैं, क्योंकि आपका प्यार ही है जो हमें जोश देता है। प्रोग्राम सजाने में बनाने में आप सभी के लिए, आप साथ नहीं देंगे तो ये भी मेरा ये प्रोग्राम किस काम का। वहां ना सीफ बनेंगे मेरे प्यार, हवाई से फिर वापस हॉलैंड। हमारे लिस्ट पर आखिरी नाम है मेरे प्यारे सुनने वालों, दैट इज लक्ष्मण जी, भैया लक्ष्मण जी, इट्स इवनिंग, आपके नाम गीत हम चलाएंगे। और लक्ष्मण जी हमेशा साथ देते हैं, लक्ष्मी जी भी साथ दे रहे थे, लेकिन आजकल वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन हमारे दिलों में जरूर है लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी एक गीत हमने तैयार करके रखा, एक कैनली चेहरे मालनी, एक बैन प्योर ऑफ टिटल अफगान, लेकिन ये नगमा लक्ष्मण जी आपके नाम करता हूँ। एंजॉय योर वीकेंड और बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए।

मेरे प्यारे सुन लो, वक्त आ गया है कि आपसे आ गया, मुझे लेना है। 5 घंटे लगातार आपका सेवा हम करने चले आए हैं और किया है भरपूर आपका सेवा, और आपने भी बहुत ही भरपूर मेरा साथ दिए हैं। अब आखिरी गीत हम पेश करेंगे, लेकिन आखिरी गीत चलाने से पहले आपको भी हम बता दें कि आप सभी को तहदिल से धन्यवाद हम कहते हैं, थैंक यू वेल, शुक्रिया साथ देने के लिए। आज आप सभी ने साथ दिए हैं इसलिए कि आज ये प्रोग्राम भी बहुत खूबसूरत बना सके हैं हम। आज जुदा हम हो रहे हैं, और जुदा इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अगले बुधवार, जो इस महीने का आखिरी है, आप सभी से फिर मिलने के लिए। Want ik ben er nog op de laatste dag van september, और वो भी 30 सितंबर को, जबकि हम पेश करेंगे प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर। आज साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेल, शुक्रिया मेरे प्यारे सुनने वालों। एक आखिरी गीत पेश करने जा रहा हूँ आप सभी के लिए मेरी तरफ से, और नॉर्मल साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रहा फूल तो फिर खिलेंगे, और रहा ये खूबसूरत जिंदगी तो हम जरूर फिर मिलेंगे। सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार, और खुदा हाफिज, टेक केयर, और रिमेंबर आई लव यू ऑल।

का पता। अरे तेरी आंखों के सितारों से, रुखसारों से, बीमारों से, बेकारों से, लोहारों से, आवारों से, गमखारों से, बंजारों से, लकड़हारों से, लकड़हारों से।

0: रुक छोरी रुक,
1: सर पे न झुक, अच्छी नहीं ये बहाने।
0: रुक छोरी रुक,
1: सर पे न झुक, अच्छी नहीं ये बहाने।
0: अरे तक जरा तक,
1: जल्दी से बक, कहता है क्या वो दीवाने।
0: छोरी छोरी छोरी आ,
1: अरे जा जा जा छोरा जा जा जा छोरा जा जा जा छोरा जा।

0: कर तुम
1: होश हुए गुम देखा जो मुखड़ा तुम्हारा
0: होश कर तुम
1: होश हुए गुम देखा जो मुखड़ा तुम्हारा आशिकों की सुन
0: छोड़ मेरी धुन ऐसे ही कर ले
1: गुजारा चोरिया
0: जा जा जा छोरा जा जा जा छोरा जा जा जा छोरा जा।

0: मैंने कहा जा
1: मिलकर बना आ जा, मैंने कहा आ
0: मैंने कहा जा
1: मिलकर बना आ जा, मैंने कहा हाँ
0: मैंने कहा ना
1: मैंने सुना आ आ आ आ चोरी आ आ आ चोरी आ आ आ चोरिया
0: जा जा जा छोरा जा जा जा छोरा जा जा जा छोरा जा
1: छोरिया
0: जा जा जा छोरा जा जा जा छोरा जा जा जा छोरा जा।

उजाला रेडियो डे अबे प्लस पर देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको इसे बताते ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके हैं उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो।